थो रेडियो नेपाल ख नेपाल बासे समाचार जिउपेस पाखिना दिशा थौ नेपाल सम्बत चिन्सा सो पिकुद अनलाथो तृतीया प्रदेशसभा मुजा थौ सुते चिन्सता इले चुनि तेङ्गु दो मुजा आर्थिक द या विनोजिन विधेयक या सिद्धान्त व प्राथमिकता स सल जुइगु ज्यादल दो प्रस्ताव सोमबार निसे सल न्यागु ख वैशाख 31 गते या मुज्या अर्थमन्त्री डाक्टर सोनिम वाग्ने थो सिद्धान्त व प्राथमिकता न्याउ्यादिगु ख सल कोच्याथुङका बुधबार या मुज्या मन्त्री डाक्टर वाग्ने लिसबिगु ज्यादलदु अथे राष्ट्रिय सभा या मुज्या नथौ हिनेसिया छतैले चुनि तेङ्गु ज्यादलदु मिग प्रतिनिधिसभा आर्थिक द या विनियोजन विधेयक या सिद्धान्त प्राथमिकता या विशेष सल न्यागुदो वैशाख 31 गते प्रदेशसभा मुज्या अर्थमन्त्री डाक्टर सोमनिम वाग्ने न्याव्यादिको आर्थिक द या विनियोजन विधेयक या सिद्धान्त प्राथमिकता न्याव्यादिको ख दलीय आधारीय जुगो सलसँग राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीया झबिलाल डुम्रे गण्डकी व लुम्बिनी प्रदेशीय स्वाईगो सिद्धार्थ राजमार्ग प्राथमिकता तेमा धाइदिल अथे नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद बासना थापा नेकपा एमाले सांसद डाक्टर पुष्पराज कोडेल राप्रपा सांसद खुसबु ओली स्वतन्त्र सांसद महावीर पुन थथगु नुगख तयादिल प्रतिनिधिसभा मिगया मु ज्या प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समिति या प्रतिवेदन 2083 या त बहुमत स्वीकृत यागुदो मुज्या नियमावली मस्यौदा समिति या सभापति गणेश पराजुली प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समिति या प्रतिवेदन 2083 या त विचार या धैगु प्रस्ताव या त सभा स्वीकृत यागु ख सभा नियमावली मस्यौदा प्रतिवेदन जुको सलस निहबगु विशेष लिसबुसे सभापति पराजुली नियमावली मस्यौदा प्रतिनिधिसभा या भूमिका त सुदृढ यागु कथ नियमावली देखेको नेतना दिल सभापति पराजुली नियमावली संसदीय व्यवस्था त उत्तरदायी व्यवस्थित व पारदर्शी देखेको तातुना मस्यौदा तयार जुगु नेतना दिल विधेयकीय सैद्धान्तिक सलस नेकपा एमाले प्रमुख सचेतक एन बहादुर महर प्रधानमन्त्री या त संसदप्रति जवाबदायी मयाको कथ वगु नियमावली या त चिकेमा धाइदिल प्रमुख सचेतक महर प्रतिनिधिसभा या त लोकतान्त्रिक देखे त व प्रतिपक्ष या सनिह याङ्केगु व सरकार त संसदप्रति उत्तरदायी देखेको विशेष नियमावली वेमा धाइदिल सल स नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी या प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल संसदीय सर्वोच्चता देखे त नियमावली वाच्याकेमा धाइदिल नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद नरेन्द्र कुमार केरुङ प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा लोकतन्त्र विपक्ष बाधक व शत्रु मकुसे संरक्षक ख धैगु स्वीकार्याना विपक्ष या त थ्याबीमा धाइदिल अथे राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद सरस्वती लामा नियमावली विशेष कानुन रूप सङ्घीय कानुन थिए वे मज्यु धाइदिल अथे सम संस्कृति पार्टीका सांसद आरएन ब्राई संसदीय नियमावली या त विशेष कानुन रूप संविधान शिवे चुए ते मज्यु धाइदिल बैठके सभामुख डोल प्रसाद अर्याल राष्ट्रपति कार्यालय वगु मन्त्री परिषद मौजदा मन्त्री परिषदे प्रधानमन्त्री बालिन शाह या सिफारिसे नियुक्त स्वाफ्या व ज्या लागा या विशेष वगु पौ नियङ्का दिल सरकार समस्याग्रस्त सहकारी या चिधपी बचतकर्ता या दाँली त बिगु ज्या न्याकु गुदु समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति मिङ्ग सोङ्गु सहकारी या सोस व ने च्यामे सिगु दाँली त ब्युगु ख समिति या कथ कान्तिपुर सहकारी या निसव चिन्याम शिव शिखर बहुद्देश्य सहकारी या सचिव नेखुम व पशुपति सहकारी या नेमसिगु दाँली त ब्युगु ख समिति या कथ समस्याग्रस्त सहकारी या नेकु द मनुतेगु पिखुगु अर्ब दाँली त बिमानी राष्ट्रिय सभा या मिग चोङ्गु मुज्या आर्थिक द 2083-84 नीति विनियोजन विधेयक सिद्धान्त प्राथमिकता विशेष सल ब्यागुदु मुज्या नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद नारायण दत्त मिश्र विनियोजन विधेयक कृषि लजगाए होता चुलाका ल्यामते त नेपाली लजगा बिमागु खेम्ब ब्यादिल अथे हे मुज्या नेकपा एमाले सांसद प्रेमप्रसाद दङ्गाल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद चक्कुप्रसाद सुवेदी जसपा सांसद पूजा चौधरी थथगु नगख तयादिल
मुजिया राष्ट्रिय सभा नयाँ नारायण प्रसाद दाहाल राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल प्रधानमन्त्री बालिन शाह यस सिफारिसे वैशाख 31 गते मौजुदा मन्त्री परिषद नियुक्ति स्वाफ्या व ज्यालागा कोचिना मन्त्री परिषद निसुङ्गु पौ नेङ्का दिल चितवनिया इच्छा कामना गाउँपालके कुलवाङे जङ्गली माक नयाँ उषा स्योपी सोम मस्त सिगुदु गुदया नमुना चेपाङ चिन्सदा सञ्जय चेपाङ ओ चिन्सोदया मनिता चेपाङ सिगुख राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय हात्तीबाङ प्रधान अध्यापक लोकबहादुर मगर या कथ नमुना जेठ एक गते छे सिगु ख धासा सन्जे शनिबार बहनी वास यागु झोले ओ मनिता थौसुथे खुताइले भरतपुर अस्पताले सिगु ख वैशाख 29 गते श्यामबहादुर चेपाङ या न्याम छेज पिन्स जङ्गल हगु माक देका नगु ख नेकपा एमाले सचिवालय मुज्या पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी या पार्टी दुज नोदा यागु कोचु गुदु पार्टी या ल्यु मु छ्यान्जे लेखराज भट्ट मुज्या सरकार या ज्या समीक्षा पार्टी दुज नोदा व तब्याकेगु उत पदाधिकारी व दुज पिनुगु ज्या लागा विशेष सल जुगु कनान्दिल मुज्या तिथि छिन्छगु प्रस्ताव न्योबोगु ध्यादिसे वेक्ल मेगु मुज्या जेठ 8 गते शुक्रबार चुनिगु दैदिल ऊर्जा जलस्रोत सिंचाई मन्त्रालय न्हने हगु अभ्यास त दुग्यङ्क छेलबुला हगुदु पङ्ग या विशेष निन्किने जकमुखु जेङ्कीको कथ मन्त्रालय हटलाइन 1151 या त छगु ख ऊर्जा मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ पाफयादि धुङ्का थाज्यागु ज्या या त तिसिलाक याका दिगु ख अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मालपत ज्याकु भैरवा रूपन्दे ज्या याइम नायब सुपा ओमबहादुर खाम्चा विरुद्ध विशेष अदालतले मुद्दा दायर यागुदो जगया नुगु श्रेष्ठ कायमलिसे नामसारी यागु नीति सेवा गराइलिसे निगु लाख तका कुसकया चुङ अवस्था अख्तियार पुचल मिग खाम्चा या त जोङ्गु ख नायब सुब्बा खाम्चा कुसकाको पुष्टि जुगुली आयोग बिगो कथा या ब व कैद सजाय इनाब यासे मुद्दा दर्ता यागु धका प्रवक्ता सुरेश पानी थाइदिगु ख साहित्य शिरोमणि चित्तदर हृदय सचिव निकगु बुदिया लसत्या जुम प्रवधि पाखी छगु च्याजो जुगुदु हलिनेवा दबुया साहित्य कव नेपाल भाषा साहित्य दबुया मङ्का गोसाली जुगु थुगु ज्याजोले चित्तदर हृदय वृत्ति चित्र भाषा सेवु विनय राजोपाध्य पाखे केनेजा जुगु ख थो भित्र चित्र ने छद न्हने देखुगु ख हलिनेवा दबुया केन्द्रीय नायो मनोहरलाल श्रेष्ठ ज्याजुले लस्कु सेनादिसे चित्रदर हृदय नेपाल भाषा साहित्य तदङ्गु योगदान एनादिम जो मधुको व्यक्ति ख धैदिल मु भक्त यथास साहित्यकार लोक चन तारा तुलादन चित्तदर हृदय चोयादिगु जिगु जात सफु या खे दुग्यङ्क दुवालेगु व पिवालेगु ज्या यनादिल ए महानगरपालिका 19 ग्वाली पुचया गोसला हनुमान धोका दरबार क्षेत्र संरक्षण ज्याजो ग्वाली यमरी यो कलात्मक वस्तु देखेको प्रशिक्षण ज्याजो कोचागुदो ग्वाली पुचया नाय शङ्कर महजन या नासी जुगु उगो ज्याजोले 19 नाय राजेश कुमार श्रेष्ठ पुचया सल्लाहकार पी आनन्दबहादुर साई ज्यापु मागुठे ए महानगर कमिटी या नाय पञ्चनार महर्जन यमरी प्रशासक रामदेवी पी छायादिगु ख मुपालिसे ए महानगरपालिका 19 नाय श्रेष्ठ थपिस सेकागु सिप या त व्यवहारे छेला छुलाचुङ्गु निवा तजलिजी या मसिक या त धेन्देबेला कासा यागु नापनाप व्यवसीकरण या त फुचागु ग्वाली यागु बच बियादिगु दु यमरी पुनिखुनु यमरी देका नेगु जक मुखुसे उखुनु नुगु वा दुकया उकिया त केला जाकिचु देका उकिया कलात्मक गनेद ख्या मायो बायो त्वा देवा जोला ह्याक देका अन्न भरिपूर्ण जुमाथका लक्ष्म्या प्रतिकत पूजना नना हुने तेङ्गु अमूर्त सम्पदा संस्कृति माकेको कुत जुगु प्रशिक्षक पञ्चरत्न डङ्गोल कनादिल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प इराने
थौ यागु धागु आक्रोन दिकादिगुदु ट्रम्प इरान नप दुग्यङ्क सल जुया चुङ्गु अमेरिका धाथे सल जुया चुङ्गुली वे कथ सम्ति जुगु भलसा नाप पङ्का दिल वेक इरान या परमाणु ल्वाब देखे बिमकु धयादिसे थुकी सहमति मजुसा तरहङ्गु सैन्य कारवाही यागु ख्याचो ब्यादिल थोयदुती इरान या सैन्य कमान्डर अमेरिका या त मुआमुडुगु हुइना बिना मया त ख्याचो ब्युगु बिबिसी नेतना तगुदु थौ देन्यङ्क पच्चा वा वैगु धागुदु तजागु पहाडी ओ हिमाली लागे च्वापु कुवा वैगु धुकमादु सुदूरपश्चिम ओ लुम्बिनी प्रदेश तराई लागे तान वैगु जल तथा मौसम विज्ञान विभाग धागु ख मिग सोनिगोले नि गुगु फुटी च्यागु डिग्री क्वाज था वङ्गुली थौ नि गुगु निसे सुई छगु डिग्री सेल्सियस तक थेनिगु धुकमा यागुदु नेपाल भाषी बुख कोचाल शुभ

Sunglap Nangurim Basin Sima, Binuyazan Bideki Siddhanta Tang Kakshan Poki Korla Tongu Kitup Tang Tikorla, Tijukla, Norlonpo Doctor Swarnim Wakleki, Sukmitui Jaku Tiwaki Lengeku Laki Totu Shenwae. राष्ट्रिय सभा नङ्गी यार्गे पल्जोर कोर तेदिन सुशासन सोक्पी सोग्नुला सोक्मितुई ठोटेन सकुल्ला सेवा प्रभावला खक्षण पोसी गो सुङ्गे सोक्पी यारिङदेउ सोग्नुला पल्जोर लोङ्गी तोङ गेचुग्या सुमताङ गेचुग्या जिकी बजेट टडी कोरला लोनखाङ तुई टुङिक ताङ थोरिम कुसाप्ती ओताङ क्यान क्याउ टोङ्गुला सोक्मितुई ठोटेन बिमाकी टडिक ताङ फेन्चेन पो लोबजुङ यर्गेला बजेट कि ल्यामु क्यान थोगु सुङसुङ सोग्मितुई अम्पुम्ती खप्तेला उङ्गुप्लाका मेलाकपतियो युङमो जोप ताङ तिङला स्वरूप सिसोक ताङ लाम्ला कलेला स्वरूप प्याजातु यर्गे ताङ लोबजुङला खाक्षण पोसिगोला सुगेप नाङसुङ दिलो कि सोका कि तुसोला खाङ्रिजना सोक जेकु तदोकला अनुमति लङ्गुप सिग्याल कि मितुई थो फरिन गलवाए टोसाम सोकपी सेतुप नङसिङ चिलो निटोङ निसु टुकी स्प्रिङ सिजनला खाङ्रि जेकु तदोकला गेलखप दिन्छु थोन गुकी तोङ चिकताङ सही चिकताङ गेचु ग्याचिक मितुई अनुमति लाउ सेनवा सिसी तिनाङला तेरिस नाङ लाक्पा चोमोलङमो जेकु तदोकला अनुमति बिन्दु विभाग कि लेन खेपेल कि तुमी हिमाल गौतम कि खेतोक नङ्गुबिन तन्दा सेक्ला चोमोलङमो जेकुला गेलखप गप्चु ङाङ कि सही जिताङ गुप्चु गुवाजि मितुई अनुमति लाउ यिन सिसी तिनाङला तेरिस नाङ लाक्पा ग्याना कि मि ओतुप सेनवाए तुग्रङ क्याने ग्याकार बेलायत रसिया अस्ट्रेलिया जापान नेपाल ताङ ब्राजिल कि मितुई जमोलङमो जेकु तन्दकला अनुमति लाउ सेनवाए लोनसकी सङ्दु तन्दा देन ओतुप सेनवाए सिंहा दरबारला ओतुप सिलोन देजिन लोनसकी ल्याखुङला तन्दा चुजो जिल्ला लोनसकी सङ्दु गोजु सिलोन टुङ्गी खाङ्की सेतुभिन संसदीय सुनवाई सकपला प्रस्तावित टिम्पोन छेन्पो डाक्टर मनोज कुमार शर्माकी कोरला संसदीय सुनवाई गोजुनवाए सोक्पी आरिङटोपला प्रस्तावित टिम्पोन छेन्पो शर्माकी लाकी छर्सी तङ खम्चु कोरला लोबजुङ कितुब्ला सोक्दु क्याताङ्गु सेनवाए सोक्पी सोक्सो बोध नारायण श्रेष्ठकी खम्चु गेन्सीमा प्रस्तावित टिम्पोनला ठिव जोक्थपु तपकी लोबजुङकी तन्दोकला तुसोरिङबु मथौ तपकी लाका गोजुतुब्ला तेरिला रोग्रमकी गोला सुनाङवाए प्रस्तावित टिम्पोन छेन्पो शर्माकी खप्तेला छोकपला खम्चु दिन खेलवाए संवैधानिक परिषदकी सिफारिसला संसदीय सुनवाई छोकपी अनुमोदन क्यासीमा सिङदिनकी कोसेक कितुप संवैधानिक टडीको तुप सेनवाए जोन्दा श्रम तेजिन रोजगार लोनखाङकी लोनखाङ तेजिन डेलो उतुप सोकपातिवाला लाका कि उतुप लेछेतपातुई तन्दोकला आचार संहिता सम्म लगलेन क्यानवाए लोनखाङ तिवाला गिरुवा जोशीमा खेपेल क्याउती आचार संहिता कि लेछेतपातुई टडिक ल्यामु जोप मिक्युल जाङवा सिसी लोनखाङ कि कितुप लाकाला फेन्चेन पोताङ ट्याङबु जोप ताङ लेछेतपा तिवाला सिचु नाङला देने लाका कितुप जोप मिक्युल कि दि आचार संहिता लगलेन क्याउ सेनवाए दि आचार संहिता कि ल्याखुङला अनुशासन कि टडिक सलु जोनवा सिसी लेछ पातिवाला ल्याखुङकी तुसोकी लगलेन कि तुब्ला ल्याखुङकी तेन्तेन क्याउ मजा कोन्ने ल्याखुङला उङ्गौला तङ याम्बा ल्याचेतपाती ओतङ क्यान तम्जी ल्यामु जगौ निर्देशन बिन्दु सेनवाए कृषि नाथुङ तेजिन खोर्युक लोनखाङकी मितिवाला नाथुङकी सेमजनकी नोक्योलुप क्योन युङमो जोप्ला लक्ष्य सोक्पी लाकी सोक्पा जो सेनवाए नाथुङकी सेमजन तेमा उङथुपु क्योन युङमो जोप्ला सिचु तेदिन ल्यारिम जोप ताङ साने देशन तहला फेन्चेन बोक्याने लगलेन कितुब्ला मिरा च्याङी सोक्पा ओतुप टास्क फोर्स जो सेनवाए ती लाकी सोक्पी नाथुङकी सेमजन तेमा फोकु क्योनकी कोर्ला लोबजुङ ताङ न्याम्सिप कितुप ताङ न्याताङकी समीक्षा कितुब्ला गो सिचु ताङ ठिम रुवाकी तन्दोकला सिफारिस कितुप सेनवाए ठोटेन टुङ्गिक विकास देवकोटाकी ठोटेन बिमा सकुल्ला थोङ्गु चकुलकपु गेकुला लाका गोजु सुङवाए यार्गे पल्जोर कोर तेदिन सुशासन सोक्पी सकुला खोङकी बिमा काङ थेप्चे थोकु लुक्सो फरिन गल्सीमा गेलखपकी पल्जोर सकुला क्योन फोकु सि दि कोरला ठिम तम्बु तोङ्गुप सुङसुङ ठोटेन बिमा कलेकी नेताङला मेन्जुकी तन्दोकला थोकुला टडी क्याउ इन्सिनाङ याम्बा जोलोमु नेताङला सङ ठोटेन बिमा थोकु लुक्सो फरुप सेनवाए ठोटेन बिमा टडिक टडिग्ला ठिम तम्बु जोप ताङ ठोटेन बिमा कि लोसुङ ग्याछा सिप्चु नेजुन ग्याछा ङपचु सेक न्युङमो जोप क्याने लोनखाङकी लाका कि ओतुप ठोटेन टुङ्गिक विकास देवकोटाकी खेन्तोक नाङसुङ देवकोटाकी ठोटेन बिमा ताङ डेलो ओतुप च्यापुलोपु गेकुला ठिम नाङसिन ट्याङ्गा बुमुङा सेक ठिम तङ्गुप टडिग्ला लगलेन कि तुप ताङ बिमा प्रणालीलाई पुताकपु जोपला निर्पु म्यानखाङ ताङ सेवा लङ्गुप मितुई पर्दा सिग्रिल्किकोला सुगेप नाङसुङ
नेपाली काङ्ग्रेसकी सचेतक सो बासना थापाकी दैलेखला पेट्रोलियम पदार्थ थेन्दुलाका सुङ्गी गमु गोजुगौला सुगेप नाङ्वाए रफत संसार क्लबकी गारिङकोटी क्याउ अन्तरसम्वादला खुङ्की सुर्खेत दैलेखकी लामगेछा जोमा थोप्सीमा पेट्रोलियम पदार्थ थेन्दुलाका गोजु

Matupu, Kentok Nangsung. Gelkapki Poljor Netang Yergetong Topu Tang Longup Chusinang Hakpa Tusosek, Yembi Mitiola Pentomungup Netang Kurup di Poriozanaki, Korla Shunki Hurtakane Laka Gozutup Tapaki, Sung Sung, Dirimbala Kunki Shunki Situ, Dedin Lerimla Utup Tamye, Lemutiola, Nepali Kangriski, Gapurkiao, Kentok Nangsung. ट्राफिक कोर्सुङ मक्मिकी काठमाडौँ उपत्यकाला तन्द चुजो निसु जिल्ला तोङचिक तङ सै गुताङ टुक्सुरे नि गाडी तोङगुप मितिवाला टिम तङगुप सेनवाय तितियामा ट्याङ्गा बुमगे ताङ तोङ गेचु ग्यागु गेठल्दु काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक कोर्सुङ मक्मी ल्याखुङकी सेतुबिन ट्राफिक कोर्सुङ मक्मिकी सुङसेपा त्यदिन एसपी नरेश राज सुवेदीकी सेतुप नाङसिन टिमला खेलुप्टुई नाङला तेरिस नाङ लाग्पा ट्राफिक टिम मिसि उत्यो तुप सेनवाय तुङ्ग्राङ क्याने छ्याङारेक थुने गाडी तोङगुप त्यो तङ राइट सेयरिङ कोर्की टिम मिच्युतिवालासँग टिम तङ्गु सेनवाय लामला उङथोपु दपचोक्तेमा सुङ्क्योप कितुपला हेलमेट इन्जिक मिजिक थगो कोर्ला डेलो उथुप सोक्पी कुसाप्तुई पर्ला टोङ्गु चोङ्गुप सेनवाय इन्टरनेसनल अटोमोबाइल फेडरेसन तेजिन एआइपी फाउन्डेसन कि रोक्रमला हेलमेट थिम तेजिन मापदण्ड कोर्ला कोडिक्याउ पोलिसी डाइलग ल्यारिमला हेलमेट थोकु कोर्की थिम जोने पेन्सन पोक्याने लाग्लेन कितुब्ला सुगे पुइन् ल्यारिमला नासा नेपालकी परियोजना ग्याजिनपा सुभाष भट्टराईकी नासाकी लाम सुङ्क्योप कोर्की सिचुतिवा तङ तन्दा जिन्क्योङ क्यानो तुप हेर्सअप ल्यारिम कोर्ला ख्यान्थोक नाङ्गु सिएनवाए ल्यारिमला सकसुक नङ्गुप कुसप्तुई मोटरसाइकल तङ स्कुटर दपचोक्तेमा उङथोपु कलेतियो निङमो जोब्ला हेलमेट कि ल्यागेन खक्सन पुतुप हेलमेट कोड कि ठिम लग्लेन कि गो मोटरसाइकल तङ स्कुटरला देतुप मिङी कर्की हेलमेट थगो तङ ठिम तम्बुजोगो कोर्ला सुङ्लब नङ्गुप सेनवाए नासा नेपालकी तन्दा ग्याल्योङ हेलमेट मापदण्ड कि लग्लेन डबल हेलमेट थोकु तङ चाइल्ड हेलमेट कोर्ला लेन खेफेल कितुप ल्यारिम दियो जिङक्योङ किङ ओतु सेनवाए गाँजा किलो टुक्ताङक्यान कोर्सुङ मक्मी कि मिरा निला जिम्बु सेनवाए गाईघाट कि अस्थायी कोर्सुङ मक्मी पोस्ट नेपालटार उदयपुर ने लक्लान क्याउ कोर्सुङ मक्मी सक्पी उदयपुर गढीयुल सक्पा वडा आङजिने गाँजा किलो टुक्ताङक्यान मिरा निला जिम्बु इन जिम्बु मितियो सिराहा जोङखी लीलादेवी राम ताङ अस्मिता रामला जिम्बु कोर्सुङ मक्मी कि सेतुबि इन्सिसी ती कोर्ला तान्दा कोर्सुङ मक्मी कि न्याम सिप किङ ओदुप सेनवाए रेडियो नेपाल ने आरिङकी सेरिकेकी साङ्गिरु डुप्सुङ थुसिसे

लसो फ्याफुल्ला तिनी मञ्जुश्री सम्मत 1862 तालु डेला छेपासोम विक्रम सम्मत 2083 साल जेठ लालाङ्हा मिरे मङ्गलबार चु रेडियो नेपाल हिन्न तामाङ साङ्गुरी राङ्द डेनमुला ना सूर्य मोक्तान संसदीय सुनवाई समिति से प्रस्तावित ग्रेन थिम्पोन छेटपो डाक्टर मनोज कुमार शर्मालाई मिन सर्वसम्मत से अनुमोदन लाभला प्रस्तावित ग्रेन थिम्पोन छेटपो शर्मालाई विरोध लाभन समिति रे गोर्चु से ढु उजुरी खाबुमा थे उजुरी गतल फेरि काठु इलाबा लिचा समिति लिसाङरी सांसद गदे से न्योई बा प्रश्न ल जवाब दुन्सिबन डाक्टर शर्मा से एनसेल ल कर दायित्व थे जरिमाना ल ताम्री थिम थे निहुल थिम ल आधारित चेकन निर्णय लसेलमला विशेष अंश बमला डाक्टर शर्मा से बेलायत ल छ्याम्री सानिहुल ल थिम्री बबा राङमान मुद्दा दर्ता लाभ बिमाङा छन् डिकमा थिम्दा नेपाल दिनुन् वाणिज्य थिएन देवानी मुद्दा गदरी तेनमारी बाङ्ला सेलमला विशेष संक्षेप बमला प्रस्तावित टिप्पण छिटपो डाक्टर शर्मा से न्याय थुम्री पेनालन पहुँच लेनला परि थिएन थिमखाङदा प्रविधि मैत्री सुबारी राङसे खाम्दे दोनाला बाङ्ला सेलमला विशेषन संक्षेप बमला संवैधानिक सेङजाङला सिफारिस श्री संसदीय सुनवाई समिति से अनुमोदन लाभ लिचा हिल्चोहो से ग्रेन थिम्पोन छिटपो नियुक्ति लाभ संवैधानिक थिम्मला प्रतिनिधि सभालाई तिरिलची साङ्री सांसद गदेसे सरकार से ऊर्जा थुम्री लगानी लिन लादोबा छोङ घाटा से नुङ्ने लाबा नोर्थुम्दा ज्याबा सवारी आयात प्रतिस्थापन लादोबा तिन ग्रेन राष्ट्रिय गौरवलाई आयोजना गर्दै तोकलाबा दुई ऋण सोसी जिनालाबारी खाम्बा विशेष थिम सोबारी खाम्दोला विषय सुनबा मलाई सांसद गदेसे कर्णाली थुम्ला हिल्बासे मानमान खाबा समृद्धिलाई माग्दा सरकारलाई थिम थिन गेखोरी बाबारी आखाम्बासे दारेमबासेलाई बजेट से चुताम बाबारी बाङ्लादोला विभान सरकारलाई ध्यान छेङ्ने लाभला चुरानो लासी सांसद गदेसे हिल्चोहो जामेकोला उत्थान गेखोरी निबद्धिङ गदेरी आमा थिन खोला सिबताङदा च्याङ्नला बारे आम खाम्बा सरकारी तथ्याङ्क से हुन्छ सरकार से थे गेखोर द वास्ता आलाबा थिन झोलारी ठेक्का पुइसी गे आलाबा ठेकेदार दा यो नबेमा यो न कारबाहीला बारे सरकार द मोइजेन लाभ मला थेबी माग छ सांसद गदेसे सरकार से यम्बुरी प्राङबद तापचक नातना प्राङबद थुम्डाला बारे खाम्दोबा थिम सोधोबा युल्कोङ्रिन आत्महत्याला घटना लेबन खाबा ताम्री संवेदनशीलता से अनुसन्धान लाभली छ आत्महत्या लाभरी बाध्यता नलाभ गति कारवाही लदोबा दलित हिलबदा लाभन खाबा लेबा फेबद थुम्न लाभरी विशेष टिम सोधोबा ताम्री सरकारलाई ध्यान छेङ्न लाभ मलाई सांसद गदेसे राङला लिङ्ब थाम्सी जिम्मा लिछ विनियोजन विधेयकला ठिम थेन प्राथमिकतालाई फेरि काठोइ लासी जिम्मा लिछ दान्दे थेरी रेप प्रश्न गदेला नोर्बन डाक्टर सोर्णी मुवागले चाहिँ जवाफ पिनमन मलाई राष्ट्रिय सभालाई तिनीलाई साङ्री खाब नोर्दिङ 2083-84 दबाबा विनियोजन विधेयकलाई ठिम्थेन प्राथमिकतालाई फेरि काठुइ लाभमुला काठुइरी सांसद गदेसे नोर्थुम्दा ज्याबसोबारी निजी थुम्ला मनोबल हेनलाबारे ध्यान पिन्दोबा चाबसे थिएन रेदाङ सेतोबा सेला गुणस्तर ज्याबसोबारी दारेम बासाला बजेट से प्राथमिकता पिनबारे खाम्तोला विषय सङ्कमला सिसाङला शून्य दुईरी ताम थानबा सांसद गदेसे मिसाइबा ब्यानबा थिएन ह्योलाबा घटनाका देता नियन्त्रण डिकिन्दोबा लाभ लुङसुर्से क्षति तान लाभा विद्युत प्रसारण लाइन गर्ने बेमा यो न सोधोबा विस्थापित सुकुम्बासित पुनस्थापना लादोबा थिएन बिना थिएन काठु लाभा लिचा चेकेन हिल्थेन संशोधन लाभारी सरकारलाई ध्यान छेङ्ग लाभमुला काइब्लोन बालेन्द्र साहसे होइबा ब्लोनसेङज्याङला सिसाङ दान्दे टिभन मोला काइब्लोन साहला निजी लोनखाङला अनुसार धोलो दिनला ब्लिङ यामान टिबारी होइबा चिसाङ जक्की घाइनलासे दान्दे टिभन बुबा हिन्ना चिसाङ दान्दे सिङ्गदरबारी मुबा काइब्लोन थेन ब्लोनसेङज्याङला घे दिम्री टिभन मोला सरकार से समस्यारी मुबा सहकारी री थानबा टाङ्गा एसी पिन्छेल ताप मुला समस्या तबा सहकारी री च्याङ्ना च्याङ्ना टाङ्गा थानबन खाबा गादेला टाङ्गा एसी पिनबारी छेप हिन्ना खाबा लानी रे सुम्मार कुनु हेन्से ब्लोनखाङसे सोभा सहकारी व्यवस्थापन समिति से ग्यार्जसोम से बेन्दु निश्चित भ्रेला टाङ्गा एसी पिनबारी प्रक्रिया ती मुला चुनुताङरी कान्तिपुर सहकारीलाई ग्यार्जगिसे मेन्दुची सेङ्घा शिव शिखर बहुउद्देश्य सहकारीलाई ग्यार्जगिक्से मेन्दो गाँची डुथेन पशुपति सहकारी से मेन्दुङिसलाई टाङ्गा एसी पिनबारी छेप मुला राष्ट्रिय सभाला विकास निर्मामिला थिएन सुशासन समितिलाई चिसाङरी सांसद गदेसे लुइथुम्री छोङलाबा बिमायन सेवालाबा ताम्दा प्राथमिकता पिनबारी खाम्दोला विशेष सुनबमला समितिलाई तिनटी बच्चिसाङरी नोर्दिङ 2083-84 बजेटलाई फेरि ब्लोनखाङ गदेला लोन्छेन थिएन ग्रेन ग्रेन दान पोका दिँदैन लाभा काठुरी सांसद गदेसे स्वास्थ्य बिमालाई

व्यवस्थापनलाई दुबाथेन गुणस्तरीय स्याहार विकास बजेटलाई प्रभावकारी उपयोगलाई खाम्दोला विषय सुनबहिन्न सांसद गदेशे जामे कोलागा देतालाबा हिंसा द च्याङनाला बरी खाम्दोबा लिच्छताबा हिलबा थेन सडकले अल्पत्रताबा जाजा कोलागा देला क्षमता लेना लादोबा थेन ब्रिबडोबा लोप्से पिनबारी विशेष ध्यान पिनबारी खाम्दोबा ताम्री बाङ पिन्छिब मला ब्योन गे थेन रोजगार ब्लोनखाङसे ब्लोनखाङ थेन थे नाङला निका हेरी गे लाबा कर्मचारीका देता छार आचार संहिता लागु लाबा मला ब्लोनखाङलाई पुनर्संरचना लाबा लिछा छार आचार संहिता से कर्मचारीलाई हिक्पा सेवा प्रवाह थेन प्रशासनिक अनुशासन दा व्यवस्थित लाबारी खाम्बा दोखाङ सोभ मला ब्लोनखाङला अनुसार सार्वजनिक सेवा द निष्पक्ष पारदर्शी उत्तरदायी थेन सेवा पिनबारी खाम्बा सोभारी कर्मचारीलाई हिक्पा ज्याबा ताबारी खाम्बा स्पष्ट मापदण्ड री बाबा उद्देश्य से आचार संहिता लागुला बहिन्ना सनम रिथेन पर्यावरण ब्लोनखाङसे मिथेन रिरिटिबा सेमच्यानला द्वन्द्व थुम्नला बारी गोर्खेको प्राविधिक समिति सोभमुला रिरिटिबा सेमच्यानसे तनलामान खाबा क्षति त च्याङनला बारी युल्ला ठिमथेन गेखोर ज्याबा सोसे नाम्सा नाम्सारी प्रभावकारी गेला बारी विषय गेदल सोभहिन्ना गेदलसे रिरिटिबा सेमच्यानसे लाबन खाबा क्षति द अध्ययन अनुसन्धानलासे दान्ने तोबा ठिम सोभारी सिफारिस लासेला थापमुला मोक्युल्ला लामन ह्युल्डी पशु नाबन खाबा जामे कोलाका देला मोक्युल ह्वाल चुनुन जेठलाला चुइसेङ हि कुनु हेन्से चुइसेङ हा कुनु दोना याम्बुरी सङ्ख्याला थापा मला ग्लोबल ग्यादरिङ अफ पास्टोरालिस्ट ओमन मिनला ह्वाल्डी बोकिनबारी याम्बुरी गोर्ब्ली चु ह्युल्ला पशु नाबा थेन खुल्ला ग्लारी पशु नाबन खाबा जामे कोलाका देशे बोकिन्छला थापा मला चुनुन साङ्गुरका देला छ्याम्री तिनी द तामाङ साङ्गुर जिन्जी रेडियो नेपाल ज्ञान मल्लासुगु लसो फ्याफुल्ला

ई सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल बर्दिवास ठीक विजय झासा सुनल जा मैथिली भाषा में समाचार। प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह बजौने मंत्री परिषद के बैठक शुरू भेल। प्रधानमंत्री शाह के निजी सचिवालय के हिसाबे दिन के 4 बजे के लिए बजायल गेल बैठक किछ देरी से शुरू भेल। बैठक अखन सिंह दरबार स्थित प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय में बैस रहल। अर्थमंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले सुशासन सरकार के शीर्ष प्राथमिकता रहल बतौलन। प्रतिनिधि सभा में आर्थिक वर्ष 2083-84 के लिए विनियोजन विधेयक के सिद्धांत और प्राथमिकता के संबंध में सांसद सब उठौने प्रश्न के जवाब देते अर्थमंत्री वागले सुशासन बिना टिकाऊ आर्थिक वृद्धि संभव नहीं हेबा कहत सरकार सिस्टम सुधार मार्फत आर्थिक सुधार के बाट में आगू बढ़ रहा स्पष्ट कलन। अर्थमंत्री वागले सरकार आगू बढ़ौने अर्थतंत्र के पुनर्संरचना एकीकृत पूर्वाधार लगात के प्राथमिकता से हजारों युवा सब के लिए रोजगारी सृजना के संगे नागरिक के जीवन स्तर सुधार कर में सहयोग पहुँचत से बतौलन। बैठक में अर्थमंत्री वागले सरकार सामाजिक न्याय के आर्थिक उन्नयन संग जोड़ के नीति अन्य बतौलन। प्रतिनिधि सभा के दोसर बैठक जेठ 6 गते दिन के 11 बजे बैसत। राष्ट्रसभा के बैठक में अर्थमंत्री स्वर्णिम वागले प्रस्तुत केने विनियोजन विधेयक के सिद्धांत आ प्राथमिकताक संबंध में कर बाहक विचार विमर्श भेल। विचार विमर्श के क्रम में दलीय आधार पर संसद के ई प्रस्ताव पर विषय ऊपर अपन अपन धारणा रखलन। अय क्रम में सांसद विष्णु देवी पुरा सैनी प्रधानमंत्री के राज्य व्यवस्था प्रति उत्तरदायी होबय लेल आग्रह कलन। सांसद उर्मिला आर्याल प्रस्तावित विधेयक के सिद्धांत आ प्राथमिकताक संबंध में सीमांतकृत समुदाय के प्राथमिकता रखबाक चाही सुझाव दिलन। सांसद सोमनाथ पोर्तिल निजी क्षेत्र के आत्मविश्वास बढ़ेबा सन जिम्मेवारी सरकार के रहल बतबैत वित्तीय संहिता के मार्गचित्र के संबंध में मनन करबाक लेल सेहो आग्रह कलन। सांसद रोशनी मिची डिजिटल साक्षरता बढ़ेबाक बात पर सरकार के प्राथमिकता देल जेबाक चाही बतौलन। बैठक में महंत ठाकुर वासुदेव घिमिरे सुरेश कुमार आले मगर लगायत सांसद सब अपन अपन धारणा व्यक्त कने छलथि। संसदीय सुनवाई समिति प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा के नाम सर्वसम्मति से अनुमोदन कलक। सिंह दरबार में आई बैसल बैठक के समिति के बैठक से प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश शर्मा के सर्वसम्मति से अनुमोदन केने समिति के सभापति बोध नारायण श्रेष्ठ जानकारी दिलन। सुनवाई समिति में प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश शर्मा अपन कार्ययोजना प्रस्तुत केने छले के ऊपर विचार विमर्श भेल छल। समिति आई भिनसरे प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश शर्मा के कार्ययोजना आ उजुरी अध्ययन करलाक लेल बैठक बजौने छल। शर्मा विरुद्ध समिति में 16 उजुरी पड़ल छल। संवैधानिक परिषद के सिफारिश में संसदीय सुनवाई समिति अनुमोदन कलाक बाद राष्ट्रपति नियुक्ति करबाक संवैधानिक व्यवस्था अछि। राष्ट्रीय सभा अंतर्गत के विकास आर्थिक मामला तथा सुशासन समिति के बैठक में सांसद सब स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापारिक पक्ष के सेवा प्रवाह के अधिक प्राथमिकता देल जेबाक चाही बतौलन। समिति के आई बैसल बैठक में आर्थिक वर्ष 2083-84 के बजट तर्जुमा संबंध में मंत्रालय के सचिव आ उच्च पदाधिकारी सब संग कायल गेल विचार विमर्श में सांसद सब स्वास्थ्य बीमा के उचित व्यवस्थापन आ गुणस्तरीय शिक्षा विकास में बजट के प्रभावकारी उपयोग करबाक चाही बतौलन। सांसद सब महिला हिंसा न्यूनीकरण के संगे पाछू पड़ल समुदाय आ सड़क में असमंजस में रहल धियापुता के क्षमता विकास आ शिक्षा में विशेष ध्यान देल जेबाक चाही पर सेहो जोर दिलन। बैठक में स्वास्थ्य तथा स्वच्छता खाद्य स्वच्छता मंत्रालय के सचिव डॉक्टर विकास देवकोटा स्वास्थ्य क्षेत्र के पूर्वाधार विकास और सेवा के गुणस्तर अभिवृद्धि के लिए संघ प्रदेश तह में पर्याप्त बजट विनियोजन तथा नीतिगत सुधार आवश्यक रहल जानकारी करौलन। अहिना युवा तथा खेलकूद मंत्रालय के सचिव लोकनाथ पौड़ेल नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता समय सहभागिता बढ़ावा तथा खेलकूद के संरचना पूर्वाधार विकास करबाक लेल नीतिगत सुधार आवश्यक रहल बतौलन। बैठक में महिला बाल बालिका लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक आ सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय के सचिव राधिका आर्याल दलित आ विपन्न परिवार वर्ग के सशक्तिकरण सामाजिक विभेद के न्यूनीकरण मानव बेचबिखन रोकथाम आ बाल बालिका के अधिकार सुनिश्चितता में मंत्रालय प्रतिबद्ध रहल बतौलन। अहिना शिक्षा तथा खेलकूद मंत्रालय के सचिव चूड़ामणि पोड़िल विद्यालय शिक्षा क्षेत्र के प्रविधि मैत्री तथा अपांग मैत्री बनबैत विपन्न वर्ग के विद्यार्थी सबके लेल समावेशी शैक्षिक वातावरण सृजना करबाक लेल मंत्रालय प्रतिबद्ध रहल बतौलन।
विभिन्न विश्वविद्यालय समेत संक्रमण काल के लेल उपकुलपति के काज कर के जिम्मेवारी देने प्राध्यापक सब संग विश्वविद्यालय के काज के आयोजना के अंतर्क्रिया कैल गेल छ। विश्वविद्यालय सबके सह उपकुलपति रहल शिक्षा तथा खेलकूद मंत्री सस्मित पोखरिल के उपस्थिति में भेल अंतर्क्रिया में नया व्यवस्था नहीं होब धेल विश्वविद्यालय के काज प्रभावित होब नहीं देबा लेल तथा अध्ययन अध्यापन के निरंतरता देव आवश्यक कदम के संबंध में संबंधित पदाधिकारी सब संग योजना प्रस्तुत भेल छ। एहि अवसर पर मंत्री पोखरिल विश्वविद्यालय के परीक्षा दैनिक प्रशासनिक काज सबके निरंतरता देव तथा दीर्घकालीन असर पड़े वाला निर्णय सब नहीं कर लेल निर्देशन दिलन। विभिन्न विश्वविद्यालय में उपकुलपति नियुक्ति के प्रक्रिया जारी रहल छ। उपकुलपति नियुक्ति के लिए 8 विश्वविद्यालय में सिफारिश समिति गठन भ आवेदन देव के समय समाप्त भेल तथा छनौट प्रक्रिया आगू बढ़ चुकल छ। अन्य विश्वविद्यालय सब में सेहो शीघ्र प्रक्रिया आगू बढ़ाल जात। बीरगंज महानगर पालिका के प्रमुख प्रशासकीय अधिकृति के सरुआ के लकर लगभग 3 महीना से जारी विवाद थप बढ़त गेलाक बाद महानगर के कर्मचारी सब 3 महीना से तलब भत्ता पावल नहीं सकल त विकास निर्माण के काज सेहो बंद रहल छ। मेयर उपमेयर वडाध्यक्ष सहित सोम दिन संपन्न बोर्ड बैठक से महानगर के संपूर्ण सेवा बुध दिन से बंद करबाक तथा महानगर के चाभी मंत्रालय के बुझेबाक निर्णय कलक। तत्कालीन नेपाल सरकार मंत्री परिषद 2082 फागुन 12 गते सचिव रेशम लाल कडेल के बीरगंज महानगरपालिका के प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत के रूप में खटबाक निर्णय कयने छल, मुदा महानगर के सहमति बिना सरकार हुनका पठौने कहित महानगर शुरूए से सहमति जनबैत आयल छल। विवाद तखन बढ़ल जखन कडेल सरुआ भेल 2.5 महीना पश्चात मात्र मंत्रालय से रवाना लक महानगर में हाजिर होबय लेल पहुँचला पर मेयर राजेश मान सिंह कडेल के हाजिर करावा लेल अस्वीकार कलने छ। महानगर कडेल के हाजिर होब नहीं दिलाक बाद बीरगंज महानगर बीतल 3 महीना से प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहीन बनल के प्रत्यक्ष असर महानगर के आर्थिक तथा प्रशासनिक काज में सेहो पड़ल। राजविराज नगरपालिका सहित जिला के विभिन्न चौक सबके बीच सड़क में तरकारी जताभावी पार्किंग तथा फुटपाथ अतिक्रमण के कारण

पहल शुरू कायल जायत बतौलनि। ओ प्रमुख जिलाधिकारी सहित सरकार वाला संग विचार विमर्श का समस्या समाधान के लिए निर्णय कायल जात से जानकारी दिलनि। ओ नगर प्रहरी भरना प्रक्रिया आगू बढ़ चुकल कहत नगर प्रहरी अलाक बाद जताभावी पार्किंग नियंत्रण तथा फुटपाथ खाली करावे में सहज हाथ से बतौलनि। चूरे क्षेत्र तथा प्राकृतिक स्रोत के संरक्षण के मांग करत संचालित कायल गेल मेची महाकाली जनजागरण एवं हस्ताक्षर अभियान यात्रा धमसा के ढलकेवर पहुँचल। जेठ एक गते पूर्वी नाका मेची से शुरू भेल अभियान पाँचम दिन आई एत पहुँचल। चूरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियान के आयोजना में यात्रा निकालल गेल अभियान के अध्यक्ष सुनील यादव बतौलन। वो चूरे क्षेत्र के विनाश रोका राज्य के आवश्यक दबाव देवा लेल देशव्यापी जनजागरण अभियान संचालन कायल गेल जानकारी दिलन। लहान नगरपालिका के 15 लागराह में गत बैसाख 30 गते विद्युत शॉर्ट भक भेल आगि लगी में घर पूर्ण रूप से नष्ट भेल मदन थापा मगर के परिवार के लहान नगरपालिका राहत तथा अस्थायी आवास के व्यवस्था कलक। नगर प्रहरी वडा कार्यालय के सक्रियता में पीड़ित परिवार के लिए आई अस्थायी टेंट हाउस निर्माण कायल गेल। आगि लगी पश्चात समस्या में रहल परिवार के सोम दिन लहान नगरपालिका खाद्यान्न सहित राहत सामग्री वितरण कने जनौलक। सप्तरी के विष्णुपुर गाँव पालिका में महिला के आत्मनिर्भर बनेबाक उद्देश्य के संग सिलाई कटाई तालीम शुरू कायल गेल। गाँव पालिका के वड़ा नंबर 6 में 30 गोटे महिला के लक्षित करत 45 दिन के सिलाई कटाई तालीम संचालन कायल गेल। तालीम के सोम दिन उद्घाटन करत गाँव पालिका के अध्यक्ष उमेश प्रसाद यादव सहभागी महिला के सीपमूलक सिलाई कटाई तालीम प्रदान करबाक संगे सिलाई मशीन सेहो उपलब्ध कराल जेबाक प्रतिबद्धता जनौने छलथि। आब मौसम समाचार। अखन नेपाल में पश्चिमी वायु आ स्थानीय वायु के प्रभाव रहल अछि। एहि के प्रभाव रहित काल अखन कोसी बागमती आ गंडकी प्रदेश के किछ स्थान में मेघ गर्जन आ ठनका सहित हल्का से मध्यम वर्षा भ रहल अछि। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखा के हिसाबे आई कोसी प्रदेश के हिमालय पहाड़ी भूभाग में किछ स्थान सब में बागमती आ गंडकी प्रदेश के हिमालय पहाड़ी भूभाग के किछ स्थान सब में मध्यम वर्षा आ हिमपात के तथा मधेश कोसी बागमती आ गंडकी प्रदेश के तराई तथा बाकी पहाड़ी आ हिमालय भूभाग के एक दो स्थान में मेघ गर्जन आ ठनका सहित हल्का वर्षा हिमपात के संभावना है। सुदूर पश्चिम अलुमिनी प्रदेश के तराई भूभाग में तापक्रम बढ़वाक संभावना रहल है। आई रात कोसी प्रदेश लगायत बागमती गंडकी आ लुमिनी प्रदेश के हिमालय आ पहाड़ी भूभाग में साधारणतः बादल लागत बाकी पहाड़ी आ हिमालय भूभाग में आंशिक बादल लागत बाकी तराई भूभाग में मौसम मुख्यतः सफा रहत। सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल बर्दीवास से सुन रहल मैथिली भाषा में समाचार पूरा भेल।

आर्थिक साझेदारीलाई सुदृढ बनाउन रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन चीन भ्रमणमा। हवस् त, राति 9 बजेको समाचार सकियो, 10 बजे हिन्दी भाषामा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।

0: ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। संसदीय सुनवाई समिति द्वारा प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा का नाम सर्वसम्मति से अनुमोदित। संघीय संसद के दोनों सदनों में आगामी आर्थिक वर्ष के विनियोजन विधेयक का सिद्धांत और प्राथमिकताओं के ऊपर विचार विमर्श संपन्न। क्षमतामूलक समाज निर्माण के लिए नीति तथा कार्यक्रम और बजट निर्देशित होगा, अर्थ मंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले का कथन। सुकुम्बासी बस्ती में विस्थापितों को प्रति परिवार 25,000 उपलब्ध कराने का मंत्रिपरिषद का निर्णय और रूस चीन राजनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन भ्रमण पर। अब समाचार विस्तार से। अर्थमंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले ने कहा कि सुशासन सरकार की उच्च प्राथमिकता में है। प्रतिनिधि सभा में आर्थिक वर्ष 2083-84 के लिए विनियोजन विधेयक के सिद्धांत और प्राथमिकताओं पर सांसदों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का जवाब देते हुए अर्थमंत्री डॉक्टर वागले ने कहा कि सुशासन के बिना दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि संभव नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार प्रणाली सुधार के माध्यम से आर्थिक सुधार के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। अर्थमंत्री डॉक्टर वागले ने कहा कि सरकार द्वारा आगे बढ़ाई गई अर्थव्यवस्था के पुनर्संरचना और एकीकृत पूर्वाधार जैसी प्राथमिकताएं हजारों युवाओं के लिए रोजगार सृजन करने के साथ नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने में सहयोग करेगी। बैठक में अर्थमंत्री डॉक्टर वागले ने कहा कि सरकार ने सामाजिक न्याय को आर्थिक उन्नयन से जोड़ने की नीति अपनाई है। प्रतिनिधि सभा की अगली बैठक कल सुबह 11 बजे होगी। राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक में आगामी आर्थिक वर्ष 2083-84 के लिए विनियोजन विधेयक के सिद्धांत और प्राथमिकताओं पर चर्चा समाप्त हुई है। चर्चा के दौरान उठे सवालों का जवाब देते हुए अर्थमंत्री स्वर्णिम वागले ने कहा कि समतामूलक समाज के निर्माण के लिए सरकार की नीति कार्यक्रम और वार्षिक बजट निर्देशित होगा। अर्थमंत्री वागले ने कहा कि सरकार का ध्यान शासकीय सुधार और पूर्वाधार निर्माण पर केंद्रित रहेगा। उन्होंने बताया कि आगामी आर्थिक वर्ष का बजट गरीबी तथा अवसरों से वंचित वर्गों को ऊपर उठाने के उद्देश्य से तैयार किया जाएगा। विनियोजन विधेयक के सिद्धांत और प्राथमिकताओं पर चर्चा में भाग लेने वाले सांसदों ने कहा कि आर्थिक सुधार के लिए निजी क्षेत्र का मनोबल बढ़ाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए तथा खाद्यान्न और दैनिक उपभोग की वस्तुओं की गुणवत्ता सुधारने को आगामी बजट में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। सांसदों ने बढ़ती महंगाई को नियंत्रित करने, अमीर और गरीब के बीच की खाई कम करने वाले रणनीतिक कार्यक्रमों को प्राथमिकता देने, सीमांतकृत समुदायों के उत्थान तथा युवाओं के रोजगार योजनाओं को महत्व देने की मांग की। इससे पहले बैठक के शून्य समय में सांसदों ने समाज में बढ़ रही हत्या और लूटपाट की घटनाओं को नियंत्रित करने, आंधी तूफान से क्षतिग्रस्त विद्युत प्रसारण लाइन की शीघ्र मरम्मत करने, विस्थापित सुकुम्बासी परिवारों का जल्द पुनर्स्थापन करने तथा पर्याप्त चर्चा के बिना संविधान संशोधन की प्रक्रिया आगे न बढ़ाने की मांग की। राष्ट्रीय सभा की अगली बैठक जेठ 8 गते शुक्रवार दोपहर 1:15 पर बुलाई गई है। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में सांसदों ने छुआछूत और जातीय भेदभाव समाप्त करने के लिए विशेष योजना लाने की मांग करते हुए सरकार का ध्यान आकर्षित किया। प्रतिनिधि सभा की बैठक से आकस्मिक और शून्य समय में सांसदों ने कहा कि तापलेजुंग के पाथीभरा में निर्माणाधीन केवल कार परियोजना आगे बढ़ेगी या रोकी जाएगी, इस बारे में सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। उन्होंने देश भर में बन रही सड़कों का निर्माण कार्य समय पर पूरा करने तथा हाल ही में चोरी हुए रातो मच्छिंद्रनाथ के दायां बायां रखे जाने वाले हिटी मंग की खोज के लिए सरकार से पहल करने की मांग की है। नेपाल की विभिन्न नदियां के बढ़ते दोहन तथा चिंता जताते हुए सांसदों ने नदीजन्य पदार्थों के वैज्ञानिक प्रबंधन, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन का कड़ाई से कार्यान्वयन तथा अवैध उत्खनन में संलग्न लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। साथ ही किसानों को समय पर रासायनिक खाद्य उपलब्ध कराने की ओर भी सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है। सुनवाई समिति की बैठक में प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश मनोज कुमार शर्मा ने सूचना प्रौद्योगिकी की प्रयोग से न्याय तक पहुंच बढ़ाने की बात कही। राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल ने सर्वोच्च अदालत के नवनियुक्त प्रधान न्यायाधीश मनोज कुमार शर्मा को आज पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में आयोजित एक समारोह के दौरान राष्ट्रपति पौड़ेल ने प्रधान न्यायाधीश शर्मा को शपथ दिलाई। प्रधान न्यायाधीश शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह में उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव, प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह, सभामुख डोल प्रसाद अर्याल, राष्ट्रीय सभा अध्यक्ष नारायण प्रसाद दहाल सहित उच्च सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति रही। संसदीय सुनवाई समिति ने प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश मनोज कुमार शर्मा के नाम को सर्वसम्मति से अनुमोदित कर दिया है। आज सिंह दरबार में हुई समिति की बैठक ने प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश शर्मा के नाम को सर्वसम्मति से मंजूरी दी। समिति के सभापति बोध नारायण श्रेष्ठ ने इसकी जानकारी दी है। सरकार ने सुकुम्बासी बस्तियों से विस्थापित हुए परिवारों के पुनर्स्थापन के लिए प्रति परिवार 25,000 रुपए देने का निर्णय किया है। आज सिंह दरबार स्थित प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय में हुई मंत्रिपरिषद बैठक ने काठमांडू उपत्यका के नदी किनारे स्थित जोखिम युक्त बस्तियों को हटाते समय विस्थापित होने वाले व्यक्तियों का विवरण सत्यापन कर प्रति परिवार पुनर्स्थापन खर्च के रूप में 1,25,000 रुपया उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। ये जानकारी सरकार के प्रवक्ता सस्मित पोखरेल ने दी। प्रवक्ता पोखरेल ने बताया कि जोखिम युक्त बस्तियों से हटाए गए लोगों को वैकल्पिक आवास की व्यवस्था स्वयं करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु 5 सदस्यीय परिवार को प्रति माह 15,000 रुपए राहत राशि भी दी जाएगी। मंत्रिपरिषद बैठक ने प्रत्यायन नियमावली 2083 को स्वीकृति देने, सैनिक सेवा 6 संशोधन नियमावली 2083 को स्वीकृत करने, नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली 2083 के अनुसार राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी के सचिवों के दरबंदी मिलान और पदस्थापन सहित अन्य निर्णय भी किए गए हैं। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
1: ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
2: सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
1: यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला, तेरो आमासँग कुरा गर।
2: पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
1: किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
2: ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
1: सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्।
3: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।
0: अब बाकी समाचार। निर्वाचन आयोग ने फागुन 21 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन का खर्च विवरण सार्वजनिक किया है। आज आयोग ने विज्ञप्ति जारी करके निर्वाचन में सरकार से 6,71,92,00,000 रुपए प्राप्त हुई थी, जिसमें 4,96,78,00,000 रुपए खर्च होने की जानकारी दी है। नेपाल प्रहरी ने नागरिक केंद्रित पुलिस सेवा और प्रविधि मैत्री रूपांतरण के मुख्य प्राथमिकता में रखते हुए आगामी 3 वर्षों के लिए रणनीतिक योजना सार्वजनिक की है। आज प्रहरी प्रधान कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में पुलिस संगठन को अधिक सक्षम, उत्तरदायी और भरोसेमंद संस्था के रूप में स्थापित करने के लक्ष्य के साथ यह रणनीतिक योजना सार्वजनिक की गई है। युवा, श्रम तथा रोजगार मंत्रालय ने मंत्रालय तथा उसके अधीनस्थ निकायों के कर्मचारियों के लिए नई आचार संहिता लागू की है। मंत्रालय के पुनर्संरचना के बाद जारी की गई इस आचार संहिता का उद्देश्य कर्मचारियों के आचरण, सेवा प्रवाह और प्रशासनिक अनुशासन को व्यवस्थित करना बताया गया है। मंत्रालय के अनुसार सार्वजनिक सेवा को निष्पक्ष, पारदर्शी, जवाबदेह तथा सेवामुखी बनाने के लिए कर्मचारियों के व्यवहार और कार्यशैली को स्पष्ट मानकों के दायरे में लाने के उद्देश्य से यह आचार संहिता लागू की गई है। कृषि, वन तथा पर्यावरण मंत्रालय ने मानव वन्य जीव संघर्ष प्रबंधन के लिए एक प्राविधिक समिति का कार्यदल गठन किया है। यह कार्यदल वन्य जीवों से होने वाले नुकसान को नियंत्रित करने, नीति तथा कार्यक्रम में सुधार करने और स्थानीय स्तर पर प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए गठित किया गया है। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज चीन का दौरा करेंगे। यह दौरा उनके अमेरिकी समकक्ष डोनाल्ड ट्रंप के बीजिंग दौरे के कुछ ही समय के बाद हो रहा है, जहां उन्होंने चीनी नेता सी

0: वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित हो रहा है। दोनों शीर्ष नेता न केवल द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाई देने पर बात करेंगे बल्कि आर्थिक सहयोग और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय व क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसदीय सुनवाई समिति द्वारा प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा का नाम सर्वसम्मति से अनुमोदित। संघीय संसद के दोनों सदनों में आगामी आर्थिक वर्ष के विनियोजन विधेयक का सिद्धांत और प्राथमिकताओं के ऊपर विचार विमर्श संपन्न। क्षमतामूलक समाज निर्माण के लिए नीति तथा कार्यक्रम और बजट निर्देशित होगा, अर्थ मंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले का कथन। सुकुम्बासी बस्ती से विस्थापितों को प्रति परिवार 25,000 उपलब्ध कराने का मंत्रिपरिषद का निर्णय और रूस चीन रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन भ्रमण पर। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।
1: सादा खाना 100 रुपैयाँ, मटन खाना 200 रुपैयाँ। ओए, मोबाइलको डाटा पनि हामीले चलाएको मेनु अनुसार महँगो र सस्तो पर्नु पर्ने होइन र?
2: हुन्छ नि मित्र, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, भाइबर, व्हाट्सएप जस्ता सामाजिक सञ्जालहरू मात्रै चलाउने हो भने नेपाल टेलिकममा असाध्यै सस्तो मूल्यमा सोसियल मिडिया डाटा प्याक पाइन्छ। त्यही लिने मजाले चलाउने
1: स्टार 1415 हेस डायल गर्नुहोस्।
3: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।

0: गजल गंगा।
1: रुकावट आउँदा जाँदा मुसाफिर लगाउन आउँछ अन्दाजा मुसाफिर। रुकावट आउँदा जाँदा मुसाफिर लगाउन आउँछ अन्दाजा मुसाफिर। मलाई भन कहाँ पुग्ने हो कोसिस, कहाँ हिँड्छ नि बाटोका मुसाफिर। लगाउन आउँछ अन्दाजा मुसाफिर, जमाना देखिछौ एक साथ हामी, जमाना देखिछौ एक साथ हामी। म मन्जिल हुँ रहो दुनिया मुसाफिर, लगाउन आउँछ अन्दाजा मुसाफिर। खबर सोधुन यो हावासँग मेरो, खबर सोधुन यो हावासँग मेरो। बनाएका बने जस्ता मुसाफिर, लगाउन आउँछ अन्दाजा मुसाफिर। अझै छन् चाहना डुब्ने कसैका, अझै छन् चाहना डुब्ने कसैका। अझै छन् साथ अप्ठ्यारा मुसाफिर, लगाउन आउँछ अन्दाजा मुसाफिर। सबैले मागे जति भेट्टाउँदैनन्, सबैले मागे जति भेट्टाउँदैनन्। हुँदैनन् पुराहर सपना मुसाफिर, लगाउन आउँछ अन्दाजा मुसाफिर। रहन हामी दिँदैनौ शर्त राखी, रहन हामी दिँदैनौ शर्त राखी। यही रहने थिए जोया मुसाफिर, लगाउन आउँछ अन्दाजा मुसाफिर। गरुन यो जिन्दगी पुरा कुनै दिन, गरुन यो जिन्दगी पुरा कुनै दिन। रिदम आधा सफर आधा मुसाफिर, लगाउन आउँछ अन्दाजा मुसाफिर। रुकावट आउँदा जाँदा मुसाफिर।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया, उनको हमसे प्यार है।

0: रेडियो नेपाल, नयाँ नेपालको समावेशी आवाज, राष्ट्रिय रेडियो, राष्ट्रको संचार।
1: I'm sorry, Nami. मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे प्लीज माफ कर दो।
2: It's over. अब सब कुछ खत्म हो चुका है शेर। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अब तुमसे शादी